0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

माने आजुरा को बैठी सावने आई रही चुमा पाने ओरी ओ राजा रानी रानी आई उन संसार की नहीं रही ले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पी रही ले ओरी ओ

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उजालो
2: प्राली को हो
3: राष्ट्र को शान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

बिजुली बत्ती सैलंगे फेम जती सबाए जानलाई नमस्कार। दाम पैसा गने मैले यति भने सबाए जानलाई नमस्कार। भातैर पाको रुदु होइन गुदु यति हुन त पक्कु महान।

0: शुरू मत करना था भाई।
1: क्या
2: पैसा बा दुलटे कर जाऊ मां कैसा रे लरी लरी भन बिरसाऊ का सगा।

जवान दे रही ना साई भाई एक देसाई ना बीसोई माँ फोटो की फंक्शन घर में बसने रुंचन एक देसाई ना बीसोई माँ आकाश भरी नवै लागे तारा जुन चाहिँ लागे माजाइमा मतिर हेर्दा ताराले गर्दा जुन चाहिँ लागे माजाइमा विश्वभरि रक्षा गरी देऊ बत्ती बाल चाउ साँझमा हरि हरि।

राम हरे राम राम लय लय पानी चाहे चिरुआ आता मालुकी लय माथा मा लाउकी बाबरी बन

काली जांदा तीर खाई लागा बने खावला काकरो चीरेरा हम खाने का चाय बने का साचाई खावला काकरो चीरेरा यो थोत्रो पार्टी रूम नहीं मात्रा यो की आवला सुदीन फिरेरा हाताको बाईको मोबाइल कि चाहिको आउला सुदिन फिरेर अकासाइने यो गरुला पाखी बोई बोई ने कमिलो

त्रय ताप हरी उद्धार हमरो कर हे मुरारी। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि मेष्टनयम कृष्ण त्वम अहम शरणम गत। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते रक्ष मे स्तनयम कृष्ण त्वम अहम शरणम गत। नारायण ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण।

सत दसाए पैदा जीव हर को गराए माइले चैतन्य पारे तसाई चैतन्य होना गए सकल जीव विद्याई स्वरूप में पसे लागे जन्म करना ती बर्माले द्यैहरूमा फाँसी घरका बाहिर भित्र जुन तराहको देखिन्छ आकाश यहाँ उसैमा फिक मोही फगत सम्पूर्ण संसारमा आकाश नाश हुँदैन जुन तराहले भत्केर घरको